0: हेलो
1: हेलो
0: विवाद में हिरे रे है
1: रेवो सिखिवो बामा बुगास
0: सिरेवो सिखास
1: जिकेंदे केतो में दाम में वांजे बने विवांदे जिकेंदे
0: सी
1: इमान पास्कार के वो मत जिकेंदे सी
0: हेगो
1: ओके बा हवन ने पास नो बोचो के जिकेंदे सी
0: हम्म
1: ए रे कान कान जा खोली नी संगा हम मत में सिकोरो रे जिकेंदे सी
0: वानुमा
1: wani mulisando natika munde ngane namunyongi wabanza natafite mato nge tikita ndo tika mrakoze
0: mrakoze chane nao kigani wanira mkamahoro mwakura kwa mirongi tanda tunakabili ubusa ubusa ubusa gatanda tu gatanda tu gatanda tu alo alo mwenye wachuni dushowe kumvikana rasura kugirageza hanyuma